ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 14 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग में मुलाकात की है। 9 साल में पहली बार चीन यात्रा पर गए ट्रंप बुधवार को राजधानी पहुंचे। बृहस्पतिवार को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शी जिनपिंग ने अपने काफिले के साथ पहुंचे ट्रंप का अभिवादन किया और दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेता वार्ता के लिए भवन के अंदर गए। शी जिनपिंग ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध विश्व के लिए अच्छे हैं। आपसी सहयोग से चीन और अमेरिका दोनों को लाभ होगा और टकराव से हानि। हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ट्रंप ने स्वागत के लिए शी जिनपिंग को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच अब तक का सबसे लंबा रिश्ता रहा है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.25 घंटे तक बातचीत हुई। जापानी व्यवसायों ने पिछले वित्त वर्ष में मजबूत लाभ दर्ज किए हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण वे कठिन समय के लिए तैयार हो रहे हैं। आय संबंधी चर्चा जोरों पर है। SMBC निक्को सिक्योरिटीज ने मंगलवार तक वार्षिक नतीजे जारी कर चुकी 536 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनमें से

कई कंपनियां टोक्यो शेयर बाजार के प्राइम मार्केट में सूचीबद्ध हैं। विश्लेषण में पाया गया कि तुलनात्मक आंकड़ों वाली 524 कंपनियों में से लगभग 70% ने मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लाभ में वृद्धि दर्ज की है। अमरीकी शुल्कों के बावजूद एआई और डाटा केंद्रों की मजबूत मांग से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिला। बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों को शेयरों की ऊंची कीमतों और ब्याज दरों से लाभ हुआ। हाल के वर्षों में कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह चलन बदल सकता है। घाटे का अनुमान देने वाली दो कंपनियों को छोड़कर शेष 40% कंपनियों को इस वित्त वर्ष में आय में गिरावट की आशंका है या उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अनिर्धारित रखा है। कीमतों में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की अस्थिर आपूर्ति के कारण माल ढुलाई कंपनियों, रसायन कंपनियों और वाहन निर्माताओं के लिए पूर्वानुमान कमजोर हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण विश्वसनीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। जापान के 3 मेगा बैंकों को अमरीकी स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई मॉडल क्लॉड मिथोस तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये 3 वित्तीय संस्थान MUFG, सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो हैं। यदि योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो नए एआई मॉडल प्राप्त करने वाले देश के पहले संस्थान बन जाएंगे। कहा जाता है कि एंथ्रोपिक के क्लॉड मिथोस में ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचानने की असाधारण क्षमता है। इससे इस तकनीक के गलत हाथों में पड़ने की आशंका बढ़ गई है। साइबर हमलों के लिए इस मॉडल का उपयोग वित्तीय प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका में यह मॉडल केवल सीमित संख्या में कंपनियों और संगठनों को ही उपलब्ध कराया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में टोक्यो में जापानी वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक में क्लॉड मिथोस पर चर्चा की गई। कातायामा ने अमरीका सरकार के साथ सहयोग करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में पार्किंसंस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई चिकित्सा पद्धति आशा की किरण लेकर आई है। वे जल्द ही देश की जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं का उपयोग करके उपचार प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि उपचार दुनिया में पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। जापानी दवा निर्माता कंपनी सुमितोमो फार्मा ने एमशेप्री का उत्पादन किया है। इसमें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त तंत्रिका ऊतक का उपयोग किया जाता है। ये उपचार पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोगों में शारीरिक गतिविधि क्षमता को बहाल करने के लिए बनाया गया है। 7 मरीजों ने नैदानिक परीक्षणों में भाग लिया, जिनमें से कुछ की गतिविधि क्षमता में सुधार देखा गया। चिकित्सा अधिकारियों ने एमशेप्री को जन स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उपचार की लागत लगभग 5,53,00,000 येन यानी $3,50,000 निर्धारित की है। मासिक खर्च की सीमा तय करने वाली व्यवस्था के कारण मरीजों पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा। सुमितोमो फार्मा को उम्मीद है कि इलाज इस वर्ष शरद ऋतु के आसपास शुरू हो जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष करीब 130 मरीजों का इलाज किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके अब तक खोजी गई रासायनिक रूप से सबसे पुरानी तारा निर्माण करने वाली आकाशगंगा का अवलोकन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में जापान के कानाजावा विश्वविद्यालय और जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ता शामिल हैं। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके LAP-1B नामक एक अत्यंत धुंधली आकाशगंगा से उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन किया। LAP-1B ने 13 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद ये प्रकाश उत्सर्जित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंधली आकाशगंगा को ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक प्रभाव से मैग्निफाई किया गया, जिससे आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह के पास से गुजरने के बाद उससे निकलने वाला प्रकाश एम्पलीफाई हो गया। उनका कहना है कि 30 घंटे से अधिक समय के अवलोकन के बाद उन्होंने पुष्टि की कि LAP-1B में ऑक्सीजन की उपस्थिति अब तक देखी गई सभी आकाशगंगाओं में सबसे कम थी। उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व लगभग ना के बराबर मौजूद थे, लेकिन ऐसे पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। कानाजावा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नाकाजिमा किमिहिको के अनुसार ये शोध ये समझाने में मदद करता है कि मानव के उद्भव का कारण बनने वाले तत्व अंतरिक्ष में कैसे बने और एकत्रित हुए। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।